उदय दस गया वी मिन जी हेगनो बाता गनो गया एम ए दानो स्वाप चे गया कुतो सब जी स्कस दीसा को भी सब हेगनो एनुअल वॉलीबॉल टूर्नमेंट है जे आगनो गया नई है एवटाक सच गया वाप से उदाक सज है कुथ जस बिता गनो गया निशो सी स्पीच गया बिही माँ जस को दुस्त गया कुथ या क्या चेत कुछ नई हेम दानो सुदी दे वी मिन जी खैया उदय दस गया वही आई जिम्मे दानो चाहिए कुतो न्यू क्या Canada hi Canadian teams get Jimedwano Jimedoda Bamsk Binani Chekinoji Buffalo de Toronto Chbaguchu Chek New York Islanders Ottawa Chbaguchu Kaiminoji Chai Winnipeg de Chicago Chbatouch Ekuji ge Utah Edmonton Agnew Chbaguchu ge Agnew Pasayo Jimedwano Kokia Mamo Big Show but didn't get new games Jimedwano Konde Bamsk Binana Chonji so Daxis Agnew Medod Bajmon